अरुणालय है, अर्थालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

0: टेक है क्या गुण तेरे सार शमाली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परियो रामदास, नाम परियो रामदास, हो दीन दयाल कृपा।

भाई बहुत मद जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो एक गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आप।

तो पहला शब्द राग जैत श्री महला नौवा ते ताल चपताल दे अंदर आप जी नूं सुनाउण दा यतन करांगे।

प्रभु जी दे मार्ग ते चलदियां चलदियां जग्यासु नूं इह समझ आ जांदी है कि हरी अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम ही उस लई सब तों वड्डी दवाई है। इसे लई प्रभु दा नाम जपण लई बार बार बेनतियां अते अरदासां करदा है अते मन विच अपनी गलती भी महसूस करदा है कि संसारक झमेलियां करके ओ नाम नहीं जप सकिया। इसलिए बेनती करदे होया महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे ने, औखद तेरो नाम दयाल मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करह प्रतपाल। भाव हे प्रभु मैनू समझ आ गई है कि केवल तेरा नाम ही मेरे लिए सारे दुखां दी दवाई है। मैं अनजाण ने तेरी महानता नूं नहीं समझिया, ऐ प्रभु तू आप कृपा कर ताकि मेरा जीवन सदा तेरे लेखे लग सके।

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख दे।

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आखदे ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई लट।

निर्मल सचे नाते तत्वमाया बघुल ये सच पाया जिनके हृदय सत्व साया मूर्ख सत्य जाने।

उन राक्षस का काटा सीसा, श्रीयस केत जगत के ईसा, ओपन भ्रष्ट गगन ते पही, सबहन आन बधाई गई। धन्य धन्य लोगन के राजा, दुष्ट दाह गरीब निवाजा, अखल पवन के सृजन हारे, दास जान मोहले हो बारे। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं।

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना के जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने आ कोई अपना बोले आप सुने।